श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाच क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

0: रेडिओ विश्वास टाइम चेक टाइम चेक।
1: दुपारचा एक वाजलाय आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
2: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक, संचयात समृद्धी।
3: विश्वास बँकेची ATM सुविधा उपलब्ध। विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, संचयात समृद्धी।
4: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
5: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही। त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
6: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, संगीत की साधना आराधना कोई आसान बात नहीं। संगीत की देवी उसी पर प्रसन्न है जो रोज कला की तपस्या करता है। शास्त्रीय संगीत जो हर एक गीत की नींव है, इस शास्त्रीय संगीत के नींव के बिना कोई भी गीत पूरा नहीं हो सकता। उस संगीत को प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी की कृपा जिस पर होती है, वही तो एक बड़ा ही अच्छा गायक बन सकता है। तो आज के प्रोग्राम में यशुदास के सुने कुछ गीत गाएंगे जिन पर सरस्वती देवी का हाथ है, उनको देवी प्रसन्न है। चलिए सुनिए उन्हीं के स्वरों में देवी सरस्वती शारदा की एक प्रार्थना।

पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो गाया था यशुदास ने फिल्म आलाप के लिए, संगीत के सच्चे उपासक थे गायक यशुदास, जिनके चुनिंदा गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, संगीत की ओर सारा जहां एक उपाय के रूप में, इलाज के रूप में देखता है। हर दर्द की दवा है संगीत, दुखों पर मरहम है संगीत। क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे थे यशुदास, मगर उनके पिता शास्त्रीय संगीत गायक थे। उनके पहले गुरु थे, संगीत की शिक्षा उन्होंने तिरुवनंतपुरम के संगीत विद्यालय से ली। केरला के संत कवि समाज सेवक नारायण गुरु ने लिखी हुई कविता गाने का मौका उन्हें सबसे पहले मिला, और तभी से उनका गीतों का सुहाना सफर शुरू हुआ। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों के सबसे पसंदीदा गायक के रूप में वह उभर आए।

0: लहू के दो रंग इस फिल्म से गीत अपने सुना जो लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतकार थे बापी लहरी और गाया था यशुदास ने। गान गंधर्वम जिन्हें कहा गया है उन्हीं के बारे में, यानी कि गायक यशुदास के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनका संगीत का सफर भी जान लेंगे। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। हिंदी फिल्मों में गीत गाने का मौका उन्हें 1970 में मिला और हिंदी फिल्मों के सारे ही गीत हिट हो गए।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

दिल पुकारा में अभी आपने वो जो गीत सुना वो था फिल्म चश्मे बदूर से, गाया था यशुदास और हेमंती शुक्ला ने, गीतकार थी इंदु जैन और संगीतकार थे राजकमल। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सारे पुरस्कारों से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और मधुर सुहाने गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। इन पुरस्कारों के साथ साथ यशुदास को 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। यशुदास ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त रूसी, लैटिन, अरबी इन विदेशी भाषाओं में भी लगभग 1 लाख गीत गाए हैं। उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि 1987 में उन्हें कहना पड़ गया कि अब मुझे कोई अवार्ड न दे। 50,000 से ज्यादा गीत गाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले थे यशुदास।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना। फिल्म स्वामी से गीतकार थे अमित खन्ना, संगीतकार थे राजेश रोशन, यशुदास, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। 60 साल का लंबा सफर संगीत के क्षेत्र में रहा है उनका, इसलिए भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें सबसे महान गायक माना जाता है। केरला में सांस्कृतिक आदर्श माना जाता है। 2001 में उन्होंने संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में बने एल्बम अहिंसा के लिए नए युग का संगीत और कर्नाटक शैली के मिश्रण में गाया। मध्यपुर में अपने संगीत समारोह में उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीत गाए। विदेशों में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वह कार्य करते रहे।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म टूटे खिलौने से एक गीत जो लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतकार थे बप्पी लहरी। 2009 में येशुदास ने शांति के लिए संगीत इस घोष वाक्य के साथ तिरुवनंतपुरम में आतंकवाद के खिलाफ एक क्रॉस कंट्री संगीत अभियान शुरू किया। ताज हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने शांति संगीत मात्रा के शुभारंभ के अवसर पर येशुदास को मशाल सौंपी। यूनेस्को की तरफ से उन्हें शांति के लिए संगीत इस उपक्रम के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। येशुदास ने मलयालम फिल्मों में काफी सारे गीतों को संगीत भी दिया। एक दिन में 11 अलग अलग भाषाओं में गीत गाने का विक्रम भी उन्होंने प्रस्थापित किया और संगीत के विश्व में अपना एक ऊंचा मकाम प्राप्त किया। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में येशुदास के बारे में बातें की और उनके गाए कुछ सुरीले पुराने नगमे हमने सुने। दोस्तों, संगीत ही ऐसा माध्यम है जो विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव और क्या चाहता है, एक सुख और शांति से भरा जीवन जो मिलता है संगीत के माध्यम से। दोस्तों, आजकल विश्व में जो लड़ाई के बारे में हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बड़ी बुरी बात है, मगर संगीत के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो कुछ और है। वो सारे दुखों को हरा देता है, दुखों को दूर करता है। तो ऐसा ही मीठा सुरीला संगीत सुनते रहेंगे रेडियो विश्वास के जरिए, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8 और मिलते रहेंगे हर मंगलवार दोपहर 1 और रात 10 बजे।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

धर्म अंतर मस्त कलंदर हो गए अंदर। उसे न पूछे कोई हमारी इंडिया खोई, चुराया उसने चैना मिलाकर हमसे नैना।

बुद्धन चीर भी तक्कर बड़के बुद्धन। अरे हम धन को लूटे अरे वो मन को लूटे, अगर माने वो गोरी तरे हम मिलके चोरी। खूब रहे

दिल्ली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो गाया था यशुदास ने, फिल्म आलाप के लिए संगीत के सच्चे उपासक थे गायक यशुदास, जिनके चुनिंदा गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, संगीत की ओर सारा जहां एक उपाय के रूप में, इलाज के रूप में देखता है। हर दर्द की दवा है संगीत, दुखों पर मरहम है संगीत। क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे थे यशुदास, मगर उनके पिता शास्त्रीय संगीत गायक थे। उनके पहले गुरु थे, संगीत की शिक्षा उन्होंने तिरुवनंतपुरम के संगीत विद्यालय से ली। केरला के संत कवि समाज सेवक नारायण गुरु ने लिखी हुई कविता गाने का मौका उन्हें सबसे पहले मिला, और तभी से उनका गीतों का सुहाना सफर शुरू हुआ। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों के सबसे पसंदीदा गायक के रूप में वह उभर आए।

0: लहू के दो रंग इस फिल्म से गीत अपने सुना जो लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतकार थे बापी लहरी और गाया था यशुदास ने। गान गंधर्वम जिन्हें कहा गया है उनके बारे में, यानी कि गायक यशुदास के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनका संगीत का सफर भी जान लेंगे। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। हिंदी फिल्मों में गीत गाने का मौका उन्हें 1970 में मिला और हिंदी फिल्मों के सारे ही गीत हिट हो गए।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

दिल पुकारा में अभी आपने वो जो गीत सुना वो था फिल्म चश्मे बदूर से, गाया था यशुदास और हेमंती शुक्ला ने, गीतकार थी इंदु जैन और संगीतकार थे राजकमल। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सारे पुरस्कारों से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और मधुर सुहाने गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। इन पुरस्कारों के साथ साथ यशुदास को 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। यशुदास ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त रूसी, लैटिन, अरबी इन विदेशी भाषाओं में भी लगभग 1 लाख गीत गाए हैं। उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि 1987 में उन्हें कहना पड़ गया कि अब मुझे कोई अवार्ड न दे। 50,000 से ज्यादा गीत गाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले थे यशुदास।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना, फिल्म स्वामी से गीतकार थे अमित खन्ना, संगीतकार थे राजेश रोशन, यशुदास, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। 60 साल का लंबा सफर संगीत के क्षेत्र में रहा है उनका, इसलिए भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें सबसे महान गायक माना जाता है। केरला में सांस्कृतिक आदर्श माना जाता है। 2001 में उन्होंने संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में बने एल्बम अहिंसा के लिए नए युग का संगीत और कर्नाटक शैली के मिश्रण में गाया। मध्यपुर में अपने संगीत समारोह में उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीत गाए। विदेशों में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वह कार्य करते रहे।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म टूटे खिलौने से एक गीत जो लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतकार थे बप्पी लहरी। 2009 में येशुदास ने शांति के लिए संगीत इस घोष वाक्य के साथ तिरुवनंतपुरम में आतंकवाद के खिलाफ एक क्रॉस कंट्री संगीत अभियान शुरू किया। ताज हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने शांति संगीत मात्रा के शुभारंभ के अवसर पर येशुदास को मशाल सौंपी। यूनेस्को की तरफ से उन्हें शांति के लिए संगीत इस उपक्रम के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। येशुदास ने मलयालम फिल्मों में काफी सारे गीतों को संगीत भी दिया। एक दिन में 11 अलग अलग भाषाओं में गीत गाने का विक्रम भी उन्होंने प्रस्थापित किया और संगीत के विश्व में अपना एक ऊंचा मुकाम प्राप्त किया।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में यशुदास के बारे में बातें की और उनके गाए कुछ सुरीले पुराने नगमे हमने सुने। दोस्तों, संगीत ही ऐसा माध्यम है जो विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव और क्या चाहता है, एक सुख और शांति से भरा जीवन जो मिलता है संगीत के माध्यम से। दोस्तों, आजकल विश्व में जो लड़ाई के बारे में हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बड़ी बुरी बात है, मगर संगीत के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो कुछ और है। वो सारे दुखों को हरा देता है, दुखों को दूर करता है। तो ऐसा ही मीठा सुरीला संगीत सुनते रहेंगे रेडियो विश्वास के जरिए, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8, और मिलते रहेंगे हर मंगलवार दोपहर 1 और रात 10 बजे।

0: खुशखबर खुशखबर, आरजे वर्कशॉप पुन्हा एकदा।
1: काय सांगतेस, आरजे वर्कशॉप पुन्हा एकदा?
0: हो, खास लोकाग्रहास्तव रेडिओ विश्वास तुमच्यासाठी घेऊन आले आहेत दिनांक 29 आणि 30 मे रोजी आरजे वर्कशॉप। तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादामुळे आरजे वर्कशॉप ची दुसरी बॅच आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। यामध्ये तुम्ही शिकू शकणार आहात व्हॉइस मॉड्युलेशन, डबिंग, प्रेझेंटेशन, प्रोनन्सिएशन आणि आरजे होण्यासाठीच संपूर्ण ट्रेनिंग। यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही। प्रवेश मूल्य फक्त 2000 रुपये। अधिक माहितीसाठी संपर्क 8800 16512 किंवा 02-5326-2426।
2: अगर आपको मेरा पीछे पीछे आना बुरा लगता है तो मुझे आगे जाने दीजिए, आप आइए मेरे पीछे पीछे।
3: आपको भी वहीं जाना है जहाँ मुझे?
2: अजी, प्यासा पानी के पास ही तो जाएगा। आप अपनी प्यास बुझाने जा रही हैं और मैं?
3: तो फिर आप जाइए ना।
2: नहीं नहीं, आप जाइए, मेरा क्या, इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से। मतलब तो प्यास बुझने से है।
3: स्टूपिड मैन।
2: स्टूपिड।

0: दुर्गे आई आई
1: दुर्गे शर्म नहीं आती
2: हंसती है
1: ये सब आपकी वजह से हुआ
0: अजी अब गुस्सा छोड़िए बाहर आकर कपड़े कपड़े सुखा लीजिए
3: वरना पानी में आग लग जाएगी और आप बर्फ हो जाएंगे
1: मालूम है क्या करना
2: कीजिए कीजिए शौक से कीजिए

0: भोले बादशाह गड्डी में पेट्रोल डाल दिया है।
1: थैंक यू।
2: कोरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा मेन साहब।
1: मतलब?
3: मतलब ये ट्रक का किराया।
1: कितना किराया?
3: वैसे तो ये ट्रक किराए के लिए खाली नहीं था, मैंने तो आपकी मदद की है।
1: लीजिए, कितने चाहिए?
3: पैसे तो मेरे पास भी बहुत हैं, वैसे फिलहाल ये कैडबरी का चॉकलेट चलेगा। आपका हिस्सा।
4: अरे तुझ्या व्यवसायाला एवढी प्रसिद्धी कशी काय मिळाली?
5: अरे हे सर्व रेडिओ विश्वाच्या ऍडमुळे शक्य झालं।
4: हो पण फार खर्च आला असेल ना?
5: नाही रे, फक्त 100 रुपयात 5 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली मला।
4: काय सांगतो?
5: हो, आता तुम्हाला पण तुमचा व्यवसाय 5 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी, तेही फक्त 100 रुपयात। तर मग आजच कॉल करा 83800 16512 किंवा 247 2626 या आमच्या क्रमांकावर।

0: खास बाल गोपाळांकरता घेऊन आलेलो आहोत विशेष कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे नातवंडांशी गप्पा. सादरकर्त्या सुमती पवार. प्रसारण दर रविवारी सकाळी 10:30. तेव्हा ऐकायला विसरू नका नातवंडांशी गप्पा.
1: छोटे छोटे सपने हमार, छोटी आशा छोटा प्यार.
2: ए, क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल.
3: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा.
4: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए. बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा. मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर. एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा. उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया. ठीक है, मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 3 बरस की किस्मत का. देखा ए! हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे.
5: सोता है, बहुत जागा है ना.
4: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको

0: भोले वाले ललुआ भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: क्या भग क्या भग
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी। हरेगा विदेशी बाबा।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: ये झूमर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, जानबूझकर हम पर गिराया गया था।
1: जानबूझकर गिराया गया था, मगर क्यों?
0: हमारी जान लेने के लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को मालूम हो गया है कि तुम मैडम बिलबिला नहीं हो और मैं पापा खान नहीं
1: हूँ। मगर ये सब कैसे मालूम हुआ?
0: यही तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे मालूम हुआ। इस राज को तो सिर्फ करमवीर जी और माँ ही जानते हैं। खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है।
1: मेरी फिक्र?
0: हाँ।
1: क्यों?
0: अगर तुम्हें कुछ हो गया
1: तो क्या?
0: तो मेरा क्या होगा?